0: क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह
1: मंसूर। तोलू मुसलमानानु रुणता खुसूसी इतला इज्तिमा सीरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम बा दहर काल पशान दाज अल्लाहुम मंजली की खपा अकीदत और इहतराम सरा अलसम सितंबर द ज़ियारत पोरस और द जुमे वारे की पशपा बांधे जीर सरपरस्ती अबुल कासिम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अलीशाह बाचा से चिपदी इज्तिमा के वा द मुल्क नुमोड़े उलमाए कराम और नात खानान बरख अखली कि पहाड़ी की मेहमान खुसूसी भई हजरत मौलाना अब्दुल कयूम हक्कानी से नौशहराना पीर मुफ्ती गौहर अली शाह से चार सदी तंगीना पीर कारी बशीर अहमद मदनी से पीर सबाक शरीफ नौशहराना लदीन अलावा मौलाना एहसानुल्लाह से पेखवरना और मौलाना फजल अली हक्कानी से और शेख मोहम्मद खान से चोटा लाहौरना बखसूसी खिताब कई जिस सरा सरा मशहूर नात खानान चिपकी जीशान हनफी मकबली जान से अयूब शाह से और नूर मजीद योशमार नात खानान ब नात खानी कवि बतास्तुल मुसलमान तख्वास्ते चिपसीरत खातमुन नबीद इज्तिमा के भरपूर तादाद की शिरकत होते और सवाबदारैन हासिल करे जेर निगरानी सैयद मोहम्मद कासिम शाह बाचा से और मौलवी साबित शाह मजहरी से पता मदरसा खानका मियाँ डेरे सवाबे मुतास्तुल पकार दे चेदे फैजान ना फैस हासिल करे और बाकायदा तशरीफ उड़े मजीद मालूम द पारा द मोबाइल शमेरदा 0334-9040-877।
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा
2: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर देव ब्रदर्स फोन 0938-273265।
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk। रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

शायद मेरी असल अहमियत भी बहुत ज्यादा है भाई. जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे लाइकर्स हैं, जितने मेरे लाइक्स हैं. लेकिन मेरे दोस्तों, इंसान की कीमत व्यूज से नहीं होती, इंसान की कदर फॉलोअर से नहीं होती, इंसान की इज्जत जो है ना लाइक हासिल करने से नहीं होती. इंसान का किरदार उस वक्त सामने आता है जब कैमरा बंद हो जाता है, जब कोई देखने वाला मौजूद नहीं होता, जब कोई कमेंट करने वाला नहीं होता, जब कोई तारीफ करने वाला नहीं होता. और यहाँ एक सवाल भी आता है, असल सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको कितने लोग, मतलब दुनिया में जो है ना आप लोगों को कितने लोग देख रहे हैं. असल सवाल ये नहीं है कि दुनिया में आपको कितने लोग देख रहे हैं. असल सवाल ये है कि आपको करीब से जानने वाले लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपके बारे में मतलब उन लोगों की क्या राय है. अच्छा जी, आज का मौजू बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौजू है. इस मौजू के हवाले से मैं बात करूंगा. थोड़ी देर तक टेलीफोन कॉल्स को, लाइव कॉल्स को आपकी मतलब शामिल किया जाएगा. आज का मेरा मौजू है जनाब, वायरल होने की दौड़ में हम कहां जा रहे हैं. ठीक है ना, याद रखिएगा लिसनर्स के ये सवाल सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, ये सब सुनने वालों के लिए, सबके लिए जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वायरल होना चाहते हैं. ये सवाल हम सबके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है ना. हम सुबह आंख खोलते हैं, मतलब जो है ना ये कि आंख हमारी खुलती है, सोने से पहले जो है ना मोबाइल देखते हैं, खाना खाते हुए मोबाइल हमारे हाथ में होता है, सफर करते हुए मोबाइल हमारे हाथ में होता है या हमारे कान के साथ होता है, दोस्तों के साथ बैठते हुए हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि कभी कभी अपने ही घर में या अपने ही घर वालों के दरमियान में हम मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और फिर हैरत होती है कि वक्त कहाँ चला गया, ये वक्त मतलब जो है ना कहाँ जा रहा है. और ताहिर यहाँ ये बात भी कहना चाहेगा लिसनर्स के, हमने कभी गौर किया है कि पहले इंसान सुबह उठकर खिड़की से बाहर देखता था, मौसम महसूस करता था, घर वालों से बात करता था, चाय के साथ गुफ्तगू होती थी, मोहल्ले में सलाम दुआ हुआ करता होता था, मतलब जो है ना सलाम दुआ मतलब आम हुआ करता था, दोस्तों करती थी. सुबह आंख खुलते ही जो है ना सबसे पहले ये देखना होता है वायरल हुआ है क्या, मतलब जो है ना फेमस हुआ है, किसने पोस्ट किया है, किसकी वीडियो चल रही है, किसने क्या कहा है, किसकी जिंदगी में क्या हुआ है, किसकी गाड़ी नहीं आई है, किसने नया घर बनाया है, किसकी शादी हुई है, कौन कहाँ घूमने गया है. और फिर ऐसा ऐसा हम अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी के साथ तोलना शुरू कर देते हैं ना. और यहाँ ये बात भी मेरी मतलब नजर से गुजरी है और मेरे जहन में आ रही है, यहाँ दिखाने का सफर जी, साबित करने का सफर और आखिरकार वायरल होने का सफर. याद रखिएगा कि हम सोचते हैं कि अगर मेरी वीडियो पर 10,000 व्यूज आगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, 1,00,000 आगे तो शायद जो है ना मैं खास बन जाऊंगा, 1,000,000 आगे तो शायद दुनिया मुझे जो है ना पहचानने लगेगी. लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वालों, यहाँ ताहिर जमान ये बात भी कहना चाहेगा कि एक सवाल है, अगर लाखों लोग जो है ना आपकी वीडियो देख रहे हैं और घर में जो है ना बैठा आपका अपना बाप जो है ना आपसे बात करने के लिए तरस रहा है, तो ये कैसी जो है ना शोहरत है. अगर हजारों लोग जो है ना आपकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे हैं मगर आपकी माँ आपकी तवज्जो मुंतजर है, कैसी मतलब जो है ना कामयाबी है. अगर पूरी दुनिया आपको जानती है मगर अपने ही घर में किसी फर्द के दुख से आप बेखबर है, तो फिर जो है ना हमें एक लम्हे के लिए रुक कर सोचना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं. ताहिर यहाँ ये बात भी कहना चाहेगा कि वायरल होना बुरा नहीं है, शोहरत भी बुरी चीज नहीं है, अपनी सलाहियत दुनिया तक पहुँचाना भी गलत नहीं है. मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ शोहरत मकसद बन जाती है और किरदार रास्ते से हट जाता है. याद रखिएगा कि जब इंसान ये सोचने लगता है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, बस लोग मुझे मतलब जाना देखें, कोई भी हरकत करनी पड़े, बस वीडियो चल जाए, किसी की इज्जत मजरूह हो जाए, किसी का मिजाक बन जाए, किसी की प्राइवेसी खत्म हो जाए, किसी की तकलीफ तफरी बन जाए, मगर जो है ना मेरी पोस्ट वायरल हो जाए, मैं वायरल हो जाऊं. मेरे दोस्तों, यहाँ ताहिर ये बात भी कहना चाहेगा कि किसी की तकलीफ को

0: दीना, दीना मैसेज कीजिए, शुक्रिया दीना। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग भैया सिंह, एक ठीक ठाक ये आयजन और सिंह दा, फातमा नूर सिंह दा, बस यो नुम के दे क्या ना था सब कमने नो बदल बदल जुदा जुदा नुम ने कमने नो ये खुद दे दे सोक कमने नो हरीबा याद दे सोक फातमा याद दे सोक आलिया याद दे या शो जबरदस्त है जी। अमाया बुनेरवाल हमारे सर प्रोग्राम की शामिल शुआ, शुक्रिया अमाया बुनेरवाल है। ठोलो और इधर को ताज माज साइड सलाम ने जी, वालेकुम अस्सलाम, सलाम भाई वालेकुम अस्सलाम, शो नाइस थे। लोग वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं।
1: उरिद जाना, उरिद जाना कड़ी बारीगी,
0: अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। फरियाल हमारे साथ दे रही हैं जी, शुक्रिया फरियाल, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाल कैसे हैं? लाला हाल देओ, तुसां दे हाल ठीक हैं? एंड हाल तो ठीक हैं, तुसी आपने हाल देओ कि तुसां दे हाल ठीक हैं? भाई जान प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, प्रोग्राम का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है जी। महम हमारे साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया महम। फार्मूली से आपने हमारे साथ दिया है जी, फार्मूलो नचकमदन, फार्मूलो ने ना ना आओ फार्मूलो नचकमदन मैसेज करे जी। महम सलाम भाई वालेकुम सलाम, सिंह बाबी सिंह दा आओ, आयजनूर सिंह दा, बेबी खदा, बेबी सनूम दे प्लीज नेम चमदन मुंग तो है खजी उबो है जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम ए जे दादा सो ए जे तो मैसेज करे था, ताहिर तो मैसेज करे था सो हाँ आसमा लग चिकम दिन चश्मे उ लगो आओ चश्मो ने लग कार वाला खा बर गए, शुक्रिया जी देर मना आसमा मैसेज कौल दफारा गदुन न चिकम दिन मैसेज देव को भाई। सोशल मीडिया ने सोशल मीडिया ना मां डेरा फायदा उचा तकड़ा अमुंग लेके चिकन ने डेरा फायदा चिकन ने उचा तोली शो हाँ नुकसान हम जका ज अग जिने म चे चाता ये नुकसान मिलो पुएना शमियार चे दास लिकली दी सवाई भाई। सोशल मीडिया ना डेरा फायदा हम चतोली शी आओ नुकसान हम जो अगजिने यम ची चाते नुकसान मिलाव शवे दे आओ जो उस पर अंज कमदन डेरा स्तो माने मां लगस्ता सुदा वजिस कमदन चाता नुकसान मिलाव शवे दे दा खबर जिस कमदन लग शामिल शुए टिक टाक तास्ता डेर जा सलामुन जी आसमा सौबई ना प्रोग्राम के शामिल शुआ आसमा माना शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम माय स्वीट एंड क्यूट भैया, गुड मॉर्निंग सिंह ये ठीक ठाक ये सबा सवाबी वाला मैसेज मैसेज मैसेज मैसेज के फरीहा वेलकम वायु मुंगो आओ शुक्र दे फरीहा आवाज मुंगवाओ रे तो सबीहा खान मास्टर प्रोग्राम के शामिल शुआ गदुन नजी शुक्रिया सबीहा सलाम सबीहा या साहिबा खान दिंग नूम चिकम दे तो वाजे का चिकला यो मैसेज के चिकम देनो सबीहा खान यो मैसेज के साहिबा खान नो दीप हवाले सर लग चिकम देन माता मालूम रा कीजिए सा असल की चिकम देन नुम से दे कम नुम सर चिकम देन मुंगता सुयाद को खबैया जमा नुम दीना ना दे नो उसता मख किच कम मैसेज ने रागने ना दी कि खो दीना नुम लिखले दे आओ जमा नेम अनेजेश दानेंदे खा शुक्रिया वाह वाह वाह वाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम मामू आप कैसे हैं? आसमा हूँ कलंदराबाद से, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, तमाम सुनने वालों को सलाम जी। ये कलंदराबाद तो खैर एबटाबाद में जी, एबटाबाद से मैसेज कर रहे हैं आप।

स्तने पस्ते लगावा ओ स्तने पस्ते लगावा। अच्छा जी, अब हम अपना ये सिलसिला टोटल चेंज करते हैं जी, ये कि अपना ये सिलसिला सॉरी जी माजरत, उर्दू में मैं आप लोगों के लिए कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा जी। एंड ये ना कि ट्रैक आप लोगों के लिए आतिफ असलम की आवाज में हम शामिल करते हैं, आतिफ असलम की आवाज में। यार आतिफ असलम की आवाज को छोड़ें, ये फरहाना मकसूद और इसी के साथ साथ सरमत कदीर की आवाज है जी, बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छा लगेगा। उर्दू लवर्स जितने भी हैं वो अपनी अपीयरेंस दें जी, अपने होने के हवाले से एहसास दें, बताएं मुझे कि वो मेरे साथ साथ हैं, मेरे संग संग हैं। उर्दू के जितने भी लवर्स हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, वो मुझे आंसर्स करें 0307 270066।

वेल स्वीट लिसनर्स, ताहिर जमान ये यहाँ बात कहना चाहेगा कि कभी कभी किसी एक शख्स की कमी पूरी दुनिया की मौजूदगी के बावजूद महसूस होती है. लोग आसपास होते हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, शहर अपनी रफ्तार से चल रहा होता है, दिन अपनी रोशनी लिए आता है और रात अपनी तारीकी में ढल जाती है, मगर दिल के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहाँ सिर्फ एक शख्स की कमी मौजूद रहती है. और फिर दिल इख्तियार कहता है, मतलब बे इख्तियार दिल कह देते हैं, तन्हा है तुझ बिन, रातें मेरी दिन मेरे दिन के जैसे नहीं, नम मेरी आंखें रहें. मैं लिसनर्स यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि शायद तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम्हारे बगैर वक्त किस तरह गुजरता है. घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, मगर लम्हे जैसे अपनी जगह रुक जाते हैं. सुबह होती है, मगर सुबह वो खुशी नहीं रहती. शाम उतरती है, मगर शाम में वो सुकून नहीं रहता. और रात आती है तो खामोशी तुम्हारी यादों को और भी करीब ले आती है. और तुम साथ थे तो शायद जो है ना कभी एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी नेमत थी. तुम्हारी एक आवाज, एक मुख्तसर सा पैगाम, एक नजर, एक मुस्कुराहट, ये सब मामूली लगता था, लेकिन आज जब तुम नहीं हो तो यही छोटी छोटी चीजें पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस होती हैं, पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गई हैं. अब फोन की स्क्रीन रोशन होती है तो दिल एक लम्हे के लिए धड़क उठता है, शायद तुम्हारा नाम हो. लेकिन जब कोई इत्तला सामने आती है तो दिल फिर खामोश हो जाता है. अजीब है ना कि एक इंसान दूर चला जाए तो उसकी याद हमारे अंदर इतनी इतनी इतनी उसकी याद हमारे अंदर इतनी करीब आकर बस जाती है कि जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है. और यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स कि रात के पिछले पहर जब दुनिया सो जाती है, जब सड़कों का शोर कम हो जाता है, जब खिड़की की बाहर खामोशी उतरती है और चांद भी जैसे किसी की सोच में डूबा महसूस होता है, तब हमें याद आती है, तब तुम्हारी याद सबसे ज्यादा सुनाई देती है. मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम सामने आ जाते हो, आंखें खोलता हूँ तो हकीकत सामने खड़ी होती है. और यही हकीकत सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, यही हकीकत सबसे ज्यादा तकलीफ देती है कि जिसे दिल हर लम्हा अपने करीब महसूस करता है, वो हकीकत में कहीं बहुत दूर है. कभी सोचता हूँ तुम भी किसी रात मेरी तरह जागते होगे, क्या तुम्हारे भी होंठों पर मुस्कुराहट बेसाख्ता आती होगी, क्या तुम्हें भी अचानक मेरी याद आती होगी, क्या तुम भी कभी खामोशी से मेरा नाम सोचते होगी, या सिर्फ मैं ही हूँ जो गुजरे हुए लम्हों को आज भी अपने दिल में संभाले बैठा हूँ. याद रखिएगा लिसनर्स के कुछ लोग जिंदगी में आते हैं और सिर्फ यादें नहीं देते, वो हमारी जिंदगी का एक पूरा मौसम बदल देते हैं, या हमारी जिंदगी का एक पूरा मौसम बन जाते हैं. उनके साथ गुजरा हुआ वक्त खत्म तो हो जाता है, मगर खत्म नहीं होता. उनकी हंसी कहीं ना कहीं छाना सुनाई देती है, उनकी बातें दिल के अंदर, दिल के किसी कोने में महफूज रहती हैं. उनकी पसंद की कोई चीज, उनकी पसंद की कोई चीज, या उनकी पसंद की हुई कोई चीज देखकर बेख्तियार जो है ना मुस्कुराहट आ जाती है और फिर अचानक आंखें नम हो जाती हैं. यही तो मोहब्बत की अजीब सी कैफियत है. कभी इंसान मुस्कुराते हुए भी अंदर से रो रहा होता है और कभी आंखों में आंसू होते हैं, मगर लबों पर महबूब के लिए दुआ होती है. सो लिसनर्स, आप हमारा साथ दे सकते हैं, आप शामिल हो सकते हैं 0938-280-495. और कुछ पैगामात भी हैं, इन्हें भी मैं साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करता हूँ. कौन कौन हमारे साथ दे रहे हैं, कहाँ कहाँ से हमारे साथ दिया जा रहा है जी.
سو لسنز یہ ایک ٹریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں وے ماہی ہوئے. آئی ہوپ کہ یہ ٹریک آپ لوگوں کو اچھا لگے گا, انجوائے کریں گے, ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا, سنتے رہے گا FM 94.

अच्छा लिसनर्स, मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि तुम्हारी एक नजर का असर भी अजीब है, तुम बस एक लम्हे के लिए देख लो तो दिल कई घंटों तक उसी लम्हे को दोहराता रहता है। तुम पलखें झुका लो तो लगता है जैसे शाम अचानक नर्म हो गई है, तुम मुस्कुरा दो तो जैसे दिन की सारी थकन कहीं दूर चली गई है, और तुम सामने ना हो तो यही आंखें बेअख्तियार तुम्हारी तस्वीर तलाश करती रहती हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग हमारी

आंखों में नहीं, हमारी निगाहों के अंदर रहते हैं। तुम्हें देखने के बाद मेरी निगाहों को किसी और मंजर में वो कशिश महसूस ही नहीं होती, जैसे दुनिया के सारे रंग अपनी जगह हों मगर इनमें एक रंग सिर्फ तुम्हारे पास हो। और ताहिर यहाँ ये बात भी कहना चाहेगा लिसंस के, और तुम्हें क्या खबर के तुम्हारी आंखों को देखते हुए कितनी बार बातें जो है ना दिल में आती हैं। और तुम्हें क्या खबर कि तुम्हारी आंखों को देखते हुए कितनी बातें दिल में कह जाता हूँ, वो बातें जिन्हें जबान कभी अदा नहीं कर पाती। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों को एक बार गौर से पढ़ो, शायद तुम्हें वहाँ अपना नाम नजर आए, शायद तुम्हें वो तमाम ख्वाब दिखाई दें जो मैंने तुम्हारे साथ देखे थे, शायद तुम्हें अंदाजा हो कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरे लिए कितनी कीमती है। मैंने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं है, मैंने तुम्हें अपनी निगाहों में महफूज किया है, इसलिए तुम दूर भी हो तो मेरी आंखों के करीब महसूस होती हो, इसलिए तुम दूर भी हो तो मेरी आंखें तुम्हें अपने करीब महसूस करती हैं। याद रखिएगा लिसनर्स के, कभी कभी तुम्हारी याद आती है तो मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी तुम्हारी याद आती है तो दिल मुस्कुरा देते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। अजीब सा इम्तिजाज है ना मुकम्मल खुशी ना मुकम्मल उदासी, बस एक ऐसा एहसास जिसमें तुम शामिल हो। आंसू अगर आ भी जाएं तो इनमें जो है ना शिकायत नहीं होती है, बस इस बात की नमी होती है कि दिल ने किसी को इतनी शिद्दत से चाहा है कि उसकी याद भी आंखों तक उतर आती है। और फिर मैं खुद से कहता हूँ कि अगर ये एहसास मोहब्बत नहीं तो फिर ये क्या है, अगर ये एहसास मोहब्बत नहीं तो फिर मोहब्बत आखिर क्या होती है।

याद रखिए कि लिसनर्स के कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान जितना छुपाने की कोशिश करता है वो इतने ही नुमाया होते जाते हैं। आंखें खामोश रहती हैं मगर दिल बोलता रहता है, लब मुस्कुराते हैं मगर अंदर कहीं जो है ना एक नाम मुसलसल धड़कता रहता है। शायद मोहब्बत की सबसे खूबसूरत कैफियत यही है कि इंसान किसी को देखे बगैर भी उसे अपने आसपास महसूस करता है। हवा को कोई नरम सा झोंका आए तो उसमें उसी की मतलब जो है ना खुशबू महसूस होती है, कोई धुन बजे तो उसमें भी उसी की आवाज़ सुनाई देती है, शाम ढले तो दिल को उसी की याद आती है और रात के सन्नाटे में आंखें भी इख्तियार उसी चेहरे को ढूंढने लगे। हाय हाय, तुम भी मेरे लिए कुछ ऐसे ही हो, एक ऐसा एहसास जिसे छुपाना चाहूं तो भी छुपा नहीं सकता, बुलाना चाहूं तो भी बुला नहीं सकता। और यहाँ ताहिर ये बात भी कहना चाहेगा लिसनर्स के, तुम्हें देखता हूँ तो दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरता है जैसे बहुत दूर भटकने के बाद किसी को अपना रास्ता मिल जाए। हाय हाय, तुम्हारी आंखों में देखकर ऐसे महसूस होता है जैसे दुनिया की तमाम आवाजें कहीं दूर चली गई हों और तुम्हारी खामोशी बाकी रह गई हो। तुम कुछ ना कहो तब भी दिल तुम्हारी हर बात समझने लगता है, तुम मुस्कुरा दो तो लगता है जैसे किसी ने मेरे दिन की सारी थकन अपने हाथों से छूकर दूर कर दिया हो। और तुम जरा सा करीब आओ तो दिल को ये भी डर रहता है कि कहीं ये खूबसूरत लम्हा ख्वाब ना हो। मैंने तुम्हें चाहा तो शायद जाना इसलिए नहीं कि तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपनी दुनिया खूबसूरत महसूस होने लगी है। तुम्हारी मौजूदगी ने मामूली लम्हों को भी खास बना दिया है, तुम्हारे साथ चंद मिनट की गुफ्तगू, चंद मिनट की बातें भी। मैं लिसनर्स कहना चाहूंगा यहाँ पे कि तुम्हारी मौजूदगी ने मामूली लम्हों को भी खास बना दिया है, तुम्हारे साथ चंद मिनट की गुफ्तगू भी कभी कभी पूरा दिन का या पूरे दिन का जो है ना एक सुकून बन जाती है। तुम्हारा नाम स्क्रीन पर नजर आए तो दिल की रफ्तार बदल जाती है, तुम्हारी आवाज सुनाई दे तो चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ जाती है जिसे छुपाना मुश्किल होता है। एक ऐसी मोहब्बत है कि तुम कुछ करो या ना करो सिर्फ तुम्हारा

याद रखिएगा लिसनर्स, यहाँ ताहिर ये बात भी कहना चाहेगा कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें जिन्हें देखने को दिल नहीं चाहता, बस जी चाहता है कि वक्त वहीं ठहर जाए, सांसें जरा आहिस्ता चलें और इर्द गिर्द की सारी आवाजें खामोश हो जाएं और सामने सिर्फ वो एक हसीन एहसास रह जाए जिसके होते हुए जिंदगी मुकम्मल सी लगती है। ताहिर यहां ये बात कहना चाहेगा लिसन्स के, किसी की एक उतार देती है जैसे बरसों से बंद खिड़की अचानक खुल जाए और सुबह की पहली किरण अंदर आ जाए। फिर ना किसी दलील की जरूरत रहती है, ना किसी वादे की जरूरत रहती है, सिर्फ एक मुस्कुराहट काफी होती है कि दिल कह उठे, हाँ यही वो लम्हा है जिसका इंतजार था। ताहिर यहां ये बात भी कहना चाहेगा लिसनर्स के, मोहब्बत शायद यही है कि किसी के करीब बैठकर भी दिल को अजीब सा सुकून मिले, कोई लफ्ज ना बोला जाए, कोई लफ्ज ना कहा जाए, मगर खामोशी में पूरी गुफ्तगू हो जाए, आंखें मिलें तो वक्त का एहसास खत्म हो जाए, पलकें झुकें तो दिल की धड़कन तेज हो जाए और एक लम्हे के लिए यूं महसूस हो जैसे पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ दो ही लोग मौजूद हैं, ना फासले याद हों, ना रास्ते और ना ही कुछ और, बस एक चेहरा, एक मुस्कुराहट और दिल में उतरता हुआ एक खूबसूरत सा एहसास। याद रखिए कि लिसनर्स,

मैं लिसनर्स यहाँ कुछ थोड़ी सी ये बात भी करना चाहूंगा कि बाज लोग हमारी जिंदगी में किसी शोर की तरह नहीं आते, वो खामोशी की तरह आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरते हैं, अपनी जगह बनाते हैं और फिर एक दिन हमें एहसास होता है कि दिल के अंदर एक ऐसी दुनिया आबाद हो चुकी है जिसका जिक्र किसी से नहीं किया। मगर अजीब इंसान कभी कभी पूरी दुनिया के दरमियान खड़ा हो एक एहसास के लिए तरस रहा होता है। बात मेरी समझ आ रही है या नहीं? किसी के पूछने के लिए तुम्हारे दिल होता है दिल की दुनिया। ये बात कहना चाहूंगा मैं लिसनर्स के दिल की दुनिया आखिर खाली क्यों रह जाती है? शायद इसलिए कि हम अपने अंदर बहुत कुछ जमा करते रहते हैं। एक बात जो कहनी थी मगर कह ना सके, एक एहसास जिसे लफ्ज नहीं मिले, एक आंसू जो आंख तक

इंसान सोचता है कि अभी कहूंगा, अभी सबको बता दूंगा, मगर सामने वो चेहरा आता है, निगाहें मिलती हैं और अचानक तमाम जुमले अपनी तरतीब खो देते हैं। आखिर अल्फाज बेतरतीब क्यों हो जाते हैं, कभी आप लोगों ने सोचा है? आखिर अल्फाज बेतरतीब क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि कुछ बातें दिमाग से नहीं दिल से निकलती हैं, और दिल जब बहुत कुछ एक साथ कहना चाहता हो तो जुबान सिर्फ चंद टूटे हुए लफ्जों को संभाल पाती है। कभी एक जुमला शुरू होता है और दरमियान में रुक जाता है, कभी बात कुछ और कहना चाहती है मगर जो है ना जुबान कुछ और कह देती है। फिर इंसान खुद ही अपनी बात पर मुस्करा देता है सिर्फ इसलिए कि वो जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाता। ये कमजोरी नहीं, ये उस एहसास की शिद्दत है जिसके सामने अल्फाज छोटे पड़ जाते हैं। और जब जज्बात शेयर करने का लम्हा आता है तो लब क्यों कांप जाते हैं? शायद इसलिए कि इजहार के साथ एक खौफ भी जुड़ा होता है, सामने वाला समझेगा या नहीं, मेरे अल्फाज का मतलब वही लेगा जो मेरे दिल में है या कुछ और, मेरी बात सुनकर कर चला जाएगा कहीं आए हमने ऐसी भी क्या खता कर दी।

आज मैं लिसनर्स कहना चाहूंगा यहाँ पे कि ताहिर जमान यहाँ के है, जज्बात के हाल से बात हो रही थी ना, तो जज्बात शेयर करने का लम्हा आते हैं, ये ना बन जाए ऐसा हुए अपनी पूरी, मगर कितनी कोशिश नहीं की वो सबके चेहरों से जो है ना उदासी पढ़ लेते हैं, सबकी आवाज से परेशान होते हैं, सबके मैं ठीक हूं के पीछे छुपी हुई बस एक बेबसी जान लेते हैं, लेकिन मगर जब बात अपनी आती है तो उनकी खामोशी पढ़ने वाला कोई नहीं होता, और फिर दिल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगता है। और ये याद रखिएगा लिसनर्स के दिल का खालीपन हमेशा किसी के चले जाने से नहीं होता, कभी कभी किसी के ना आने से भी होता है, उस एहसास से कि ऐसे एहसास से कि काश कोई ऐसा होता जिसके सामने लफ्जों को तरतीब देने की जरूरत ना पड़ती है, जिसके सामने आंखें नम हो तो वजाहत ना देनी पड़ती है, जिसके सामने खामोश बैठना भी जो है ना एक मुकम्मल गुफ्तगू होता, कोई ऐसा शख्स जो ये ना पूछता कि क्या हुआ बल्कि बस पास बैठ जाता, क्योंकि कुछ लम्हे या कुछ लम्हों में सवाल नहीं साथ चाहिए होता है।

0: पर्दे में तो सब होते है ना,
1: पर्दे में अल्लाह पाक तुमको ठीक करे, सही है।
0: हाँ वो तो कह दो कि वो मेरे लिए दुआ करे कि मेरा जुकाम ठीक हो जाए।
1: तुम्हारा जुकाम, मेरे पास इधर मुसल्ला नहीं है, मैं नहीं थे तुम्हारे लिए दुआ करता।
0: नहीं वो जब नमाज के टाइम पर नमाज करते हो तो उस टाइम मेरे लिए दुआ करो।
1: अल चलो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा, ठीक है।
0: हाँ अच्छा ठीक है, ओके
1: ओके, अल्लाह हाफिज। गुलरंग सलामुना दुआ गाने,
0: अच्छा
1: सलामुना चाहता
0: को सलाम कहती हूँ, वो थायरा को और जीठियों को सलाम मेरी।
1: वालेकुम
0: मेरी लड़की होती ये कहती हूँ कि मुझे भी सलाम भेजा करो।
1: नहीं तो वोटू ना के उधरेगी का सिंगा सही साहब किताब दे।
0: नहीं मैं खुशी होती हूँ ना जो मुझे सलाम भेजे।
1: सही हाँ। गुलरंग मुझको ये बताओ,
0: आपसे ना मैं अगर कॉल न करूँ तो आपसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि मुझे याद कर लिया करो। हाँ
1: नहीं तुम कॉल न, कॉल क्यों नहीं करोगे, कॉल तो तुम करोगे।
0: नहीं कॉल तो मैं रोजाना करती हूँ, करें ऐसा है कि जब ना मिले कॉल तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ।
1: कॉल तो मिलता है, कोई बंदा जो ना ट्राई करे तो कॉल तो मिलता है।
0: हाँ बस अगर किसी दिन ना मिले ना तो फिर आप मुझे याद कर लिया करो ना।
1: चलो ठीक है, सही, अपना ख्याल रखना, ठीक है।
0: ओके अल्लाह
1: हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज,
2: अल्लाह हाफिज।
1: बालुरगुरु जी मुंगसर सुख रहा जख्म जना 0938

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है। बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन
2: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन
1: रूहानी सुकून ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे कुरान सुन्नत अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर FM 94 स्वाबी
3: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
4: We'll be back, right after the commercial break.
5: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidishu bimarano da para, the omid zere. Heather Mumak General Aspatal ho pe khabar na, balki the head.

0: right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल सूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह
2: मंसूर। टोल मुसलमानों नु रुणता खुसूसी इत्तला इज्तिमा सीरत खातमुन नबीयिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बा द हर काल पशान दाजल्लहुम मंजली कीगी खपा अकीदत और मुबारक की पशपा बांधे जीर सरपरस्ती अबुल कासिम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अलीशाह बाचा से चिपदी इज्तिमा के वा दमक नु मोड़े उलमाए कराम औनात खानान बरख अखली की पहाड़ी की मेहमान खुसूसी भाई हजरत मौलाना अब्दुल कयूम हक्कानी से नौशहराना पीर मुफ्ती गौहर अली शाह से चार सदी तंगीना पीर कारी बशीर अहमद मदनी से पीर सबाक शरीफ नौशहराना लदीन अलावा मौलाना एहसानुल्लाह से लपी खबरना और मौलाना फजल अली हक्कानी से और शेख मोहम्मद खान से चोटा लाहौरना बखसूसी खिताब कई दे सरा सरा मशहूर नात खानान चिपकी जीशान हनफी मकबली जान से अयूब शाह से और नूर मजीद योशमार नात खानान बन नात खानी कवि बतास्तुल मुसलमान तख्वास्ते चिपसीरत खातमुन नबी इज्तिमा के भरपूर दादात की शिरकत होके और सवाबदारन हासिल करे जेर निगरानी सैयद मोहम्मद कासिम शाह बाचा से और मौलवी साबित शाह मजहरी से पता मत मिया डेरे सवाबे पकार दे चेदि फैजान ना फैस हासिल करे और बाकायदा तशरीफ उड़े मजीद द मालूम द पारा मोबाइल शमेरा सिफर सत्तर।
3: माँ वेले माले शारजा ने

0: Log on to www.radiodilbar.pk.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
2: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
3: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
2: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
4: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
2: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन
1: गम उनकन पर रारवा तासु दखाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो दपारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बानी द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर है औदग प्रोडिकली टेस्टेड हुम दी कम चिप सिर्फ और सिर्फ प सलूर उसपो की दनन दनन सासु दानी और द दानो दागुना प मुकमल तो गबानी खत्म ही नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे की द मजीद